0: long run, indie pop keep the vines interested. This is Sangeet 106.1 FM. More than just music, this is us.
1: You're locked in to the Saturday Steam with Master Salim right here on Sangeet 106.1 FM. This is us.
2: Mac Daddy.
3: आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है